श्री गणेश जी को मनाएं, भक्ति का दीप जलाएं, गणपति के चरणों में शीश झुकाकर इस जीवन को मंगलमय बनाएं।

जिस पर माँ की कृपा होती है, जिस पर माँ का आशीर्वाद होता है, उसका हर सपना आबाद होता है। माँ की महिमा सबसे न्यारी है, हर वक्त भी वो, हर भक्त की वो पालनहारी है।

प्रभु तू मेरा साहेब दाता, कर कृपा प्रभु दीन दयाला, गुण गावा रंग राता। ओ परमपिता परमात्मा, ओ प्रभु साढ़े सब का मालक है, अते ओ सानू सब प्रकार दियां रहमतां, सब प्रकार दियां दातां देण वाला है। ते ओही साढ़े दीन दीन दे उपर दया करन वाला है, और असी इहो अरदास इहो फरियाद करदे हां उस मालक अगे कि ओ साढ़े उपर इस तरह ही मेहर भरिया हथ रखे, ते असी ओदे प्रेम दे विच रंगे हुए, ओदे गुण हमेशा गाउंदे रहिए।

देह सिवा बर मोहि इह, शुभ कर्मन से कबहू ना डरो, ना डरो अरसो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो।

कभी राधा के संग रास रचाए, कभी गोपियों के संग माखन खाए, ऐसे नटखट श्याम सलोने, श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम।

कब तक करूं तेरी तस्वीर से बातें, कब तक करूं तेरी तस्वीर से बातें, ना जाने कब तुझसे मेरी बात होगी। होंठ भी प्यासे हैं तेरे नाम को, होंठ भी प्यासे हैं तेरे नाम को, ना जाने कब प्यार की बरसात होगी। यूं तो हर रोज मिलते हो ख्वाबों में तुम, यूं तो हर रोज मिलते हो ख्वाबों में तुम, ना जाने कब रूबरू तुमसे मुलाकात होगी, ना जाने कब रूबरू तुमसे मुलाकात होगी। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 102.7 FM रेनबो, 103.6 MHz नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते एक बारी फिर तो थोड़े नाल मुलाकात करन दे लई, थोड़े नाल दिल दियां गल्लां करन दे लई, थोड़ा दोस्त RJ ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं जनाब। और स्टूडियो घड़ी ते इस वक्त समा 7:04 हो रहे ने, और वेला हो गया है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का। ते प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच बहुत सारिया गल्लां बातां होणगियां, थानू जानकारी दे नाल लबरेज किया जाएगा, थानू थोड़ी जानकारी दे विच वादा किया जाएगा, और मेरा ते थोड़ा साथ बनिया रहेगा ठीक 10 बजे तक। 8:30 तक आनंद माणोगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का। उस तो बाद 8:40 तो होएगा अड्डी टप्पा, ते 9 बजे होएगा सब दे दिलां दी धड़कन, दिल अपना पंजाबी दा आगाज, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दीयां गल्लां कर सकते हो। और फिलहाल संडे वाली खूबसूरत वाली मॉर्निंग दा आगाज हो चुका है, पंछियां दे शोर दे नाल, ठंडियां मिठियां हवावां दे नाल। अज दी ए सजरी सवेर बहुत सारियां नवियां, बहुत सारियां नवियां उम्मीदां उमंगां चावां लेके आईए। थोड़े चाह थोड़ी उम्मीद जरूर पूरी होएगी, और थोड़े बोलना ते मुस्कान हमेशा बनी रहे, यही असी अरदास करते हैं, यो असी फरियाद करते हैं, यही असी दिलों दुआ करते हैं। सो आगाज करते हैं अज की इस खूबसूरत सजरी सवेर का, खूबसूरत जी महफिल का, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का एक खूबसूरत जे गीत दे नाल। और गीत तो बाद गल्लां बातां का सिलसिला चलता रहेगा, नाल दी नाल थोड़ी जानकारी दे विच वादा करांगे, नाल दी नाल थानू एंटरटेनमेंट का तड़का जरूर मिलेगा, तो इस तरह ही तुसी प्रोग्राम नू इंजॉय करते रहना है। मिलते हैं इस खूबसूरत गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दीआं खूबसूरत गल्लां बातां दे नाल।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: ਸੁਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ PM ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ?

0: लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इस नाल तुहाडा घर सूर्य घर बन जांदा है, यानी तुहाडा बिजली दा बिल जीरो। होर पैदा हुई कोई भी वाधू बिजली ग्रिड नूं बेच के पैसे भी कमा सकदे हो। तां तुसी बैठे क्यों हो? हुणे रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।

0: जलंधर अपने दोस्त ललित दे नाल। दोस्तों की जिवें कि तुसी देख रहे हो कि आए दिन जड़ा आ वधदी हुई गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़दी जा रही है और हर रोज़ टैंपरेचर जड़ा आ 40 डिग्री तो पार जा रहा है। सूरज की तपश तेज़ होंदी जा रही है और कदों सवेर की ठंडी हवा जड़ी है वह गर्म हवा दे विच तब्दील हो जा रही है, इहदा तां पता ही नहीं लग रहा। सो इस कारण हर कोई परेशान है। दोपहर नूं सड़कां जिहड़ियां ओह सुन्नियां नज़र आ रहियां ने और लोग घर विच रहण दे लई मजबूर ने। सो जे किते किसी नूं कारण घर तों बाहर भी निकलना पै रहा है तो इंज लगता है जिवें बाहर अग वर रही होवे और हर कोई इस गर्मी तों इस हीट वेव तों परेशान है। सो दोस्तों ये सिर्फ आम गर्मी नहीं सगों ये हीट वेव यानी कि लू है जिहड़ी कि साड़ी सेहत दे लई बहुत हानिकारक है और इस मौसम दे विच चक्कर आना, सिर दर्द, बुखार, डीहाइड्रेशन अते हीट स्ट्रोक वर्गियां समस्यावां इन्हां दे विच जिहड़ा आ उह तेजी वेखी जा रही है और इस सब तों तुसीं अपना किवें बचा कर सकते हो, लू लगण दे की मुख कारण ने और इहदा साडे शरीर ते की असर पैंदा है, किन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल करके असीं इस लू तो अपना बचा कर सकते हैं और इन्हां तमाम सवालों का जवाब जानते हैं साढ़े अज के एक्सपर्ट डॉक्टर हरभगवान सिंह जी तो। सो उन्हां दा स्वागत करते हैं जी। डॉक्टर साहब, सब तो पहला थोड़ा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच बहुत बहुत स्वागत।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: जी सर, जिवें कि गर्मी जड़ा है आए दिन अपना रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और दिनों दिन जड़ा है टैंपरेचर वधदा जा रहा है।
1: हाँ जी, जिस तरह अपना जो अपना नॉर्मल टैंपरेचर एनवायरमेंट 37 डिग्री मनिया जाता है साइंस के मुताबिक, अगर इस तो 6-8 डिग्री टैंपरेचर वध जाता है तो असीं इस नूं जो टेंपरेचर वध जांदा इस नूं हीट वेव, जो गर्म हवा चलती है इस नूं हीट वेव दा नाम दिंदे हां।
0: जी जी,
1: क्योंकि ज्यादा गर्म हवा होंदे होण करके साडे एनवायरमेंट दे विच नमी घट जांदी हैगी आ ते इस नूं असीं जो मनुखी शरीर दे लई घातक सिद्ध हुंदी आ, आम तौर ते जो बाहर तुरदे फिरदे काम करदे आ उहनां लई घातक सिद्ध हुंदी आ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एफएम बैंड 102.7 एफएम रेनबो 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वाले दोस्त नाल दी नाल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वाले दोस्तों नूं एक बार फिर तो प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं क्या जी हुण जरा अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी जी चक दियो क्योंकि जनाब पैन लगा है रोला रप्पा, प्रोग्राम शुरू होण जा रहा है अड्डी टप्पा। सो बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद तुसी माणोगे ठीक 9 बजे तक, और 9 बजे आगाज होएगा थोड़े और मेरे सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम, सब दे दिलां दी धड़कन, दिल अपना पंजाबी। और इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी दिल खोल के दिल दीयां गल्लां कर सकदे हो। नंबर रहेगा 98-55-10-10-27। सो मिलदे हां ठीक 9 बजे तक बैक टू बैक पंजाबी गीतां दा आनंद माणो, नचो टपो और संडे वाली खूबसूरत मॉर्निंग दा आनंद माणो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

सो म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो और 10:02:35 दिन है जी संडे और संडे का मतलब सारे आदि लई छुट्टी छुट्टी छुट्टी छुट्टी है ना जी। और बहुत सारे देखो प्लान्स होते हैं सारे वधिया लगती है एक छुट्टी इंतजार होता है पूरे वीकेंड तो बाद और पूरे वीक तो बाद जो एक छुट्टी मिलती है ना तो एक छुट्टी की कीमत तुम क्या समझो। जड़े मर्जी बाबू लगा लो अपने आप में है ना जी, मैं ही नहीं कह रही हूँ बट फिलहाल मैंने पता बहुत सारे प्लान्स ने और कई लोगों के लिए संडे का मतलब है आराम नाल बह के एक कप चाह का आहा सुड़ सुड़ सुड़ करके पीना। हुण तुसी आ चाह वाली कैटेगरी च आउंदे हो या फिर उस तो बाद जिहड़े बन रहे हैं आलू दे परौठे नाल मक्खन भी आ गया मैनू पता है। सो बहुत सारिया चीज़ा ने और ब्रेकफास्ट जो तो वधिया वधिया बन गया किचन दे तो उस तो बाद आपां चल रहे हैं जी म्यूजिक वल क्योंकि गीत संगीत का साथ होना जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है। एक वाइब है देखो संगीत नाल जुड़ी है ना जी और जो म्यूजिक थैरेपी नाल असी अपने आप नूं जोड़ लैंदे आ ना तो फिर जोड़ लैंदे असी प्रोग्राम गीत बहार दे नाल। शुरुआत करिए जी प्रोग्राम गीत बहार दी। नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं कह जी की हाल चाल। रिचा जुड़ चुकी है अज फिर 102.7 एफएम रेनबो दे थोड़े नाल और शुरुआत करिए प्रोग्राम गीत बहार दी इस गीत दे नाल। स्टे ट्यून विद मी, दिल से दिल तक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
2: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण

0: साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे हैं। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी, ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराती ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराती क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग

0: जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा दे के बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो वाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और वाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
1: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते हैं?
0: नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है। और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से, पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण। उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है, तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं। और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है, जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं। और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं, पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं। और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ का छोटा जो रन है उसमें भी रहते हैं, फिर जामनगर के विस्तार में रहते हैं, पोरबंदर के विस्तार में जाते हैं, नल सरोवर में जाते हैं। तो अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं, एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस, माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रण जो है पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहाँ पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित हैं। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखाब है वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था

0: सन 1886 में उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था
1: कच्छ के महाराव ने
0: जी। फिर महाराव खेंगा 3 इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
1: सबसे पहले तो श्रोताओं को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
0: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है। तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है।
0: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजे 3 से 4 लाख हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है।
0: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे, एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है एल्गे क्रस्टेशियंस डायटम्स और ये उनकी मेन खुराक बनती है इन फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो वही साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है।
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट

0: माउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं, और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं। साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: श्रोताओं, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
0: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: एक गीत भी बताइए।
1: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
0: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
0: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग क्षेत्रों में जो विविधताएं होती हैं, तो स्टाफ अपनी तरफ से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है। जैसे कि नड़ावेट विस्तार है, उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनके भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं, जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे, और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: अवश्य, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडाबेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का। तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
1: उसके बारे में आप बात करेंगे?
2: जी, तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोलें शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर हैं तो क्यों हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या हैं आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ BSF का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है। तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाएं और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है काउंट, पुलिकेट लेक में आपका उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगो इसके अंडा कम होते जा रहे थे।
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप हम उसे डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा सेट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताए कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
2: जी।
1: और इससे पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
2: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: पोस्टबॉक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखा फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी, लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड़ के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड़ द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड़ हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको

0: डावन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये IUCN की कैटेगरी में, क्योंकि इसकी संख्या बहुत ही कम रह गई थी, तो उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसको रख दिया गया है, क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल 4 पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं, और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो GIB के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है, और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो है इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घुराड़ है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
0: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए, तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वह हुआ। उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं, के जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है। और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है। साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है, तो वो भी एक उसका कारण होता है।
2: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र, हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराट की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बस्टर सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहाँ पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन सी सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट CZA की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी

0: रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराण है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो, बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
1: यह तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई।
0: धन्यवाद।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताए थे कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: नहीं, इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात, इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में, जो भी विस्तार में, उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है, हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्सीटू भी चल रहा है। एक्सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें, और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है, जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एसओपी भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में, जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल हैं, तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में, उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े, जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे, तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन सी है?
2: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं, और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें, फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं, उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी

0: पे घास अच्छा आए तो ये है, फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है, तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहाँ से हटा पाएं, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाएं उस विस्तार की, ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसे साल गुजरात के पांचवे एक जो वेटलैंड है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लैमिंगो, सुरखाब, साथ में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, तो साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई, उसके बारे में भी आप बताइए।
0: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और कंट्री में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं गुजरात में हैं, करीब 17,000 के आसपास वेटलैंड्स हैं, वो विभिन्न जो पक्षी प्रजातियों के लिए भी बड़े अच्छे आश्रय स्थान रहते हैं। तो इसमें जो बड़े इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है, और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारीडंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छे संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल, तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष शर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

वॉट झुमका था पता नहीं, बट टाइम इज वॉट, वॉट इज टाइम, टाइम इज एग्जैक्ट 12:57। तो इस प्रोग्राम होम स्वीट होम नू अभी टाटा बाय बाय कर रहे हैं ऐसी गीत दे डाल, तो उस तो बाद आ रही हैं बस कुछ ही बुला अगला प्रोग्राम लेके, तो आडे वेल स्टे ट्यून्ड, दिल से ही दिल तक।

0: है हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुँचा, एक बच्चा देखा, न कोई आगे न कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूँ, मंदिर में रख दूँ। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई, दी लाश दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला, फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस भागा। फिर बच्चे को उठाया, गले से यूं लगाया, आगे क्या बोलूं यारा, मैं पापी दिल से हारा,
2: आगे क्या बोलूं यारा, मैं पापी दिल से हारा।
3: बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, जिए तेरा मुन्ना भाई, हो

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

तो गल बात राजेश रोशन दे संगीत दी चल रही हो ता फिर प्यार तो मैं कह रही हूँ सारियां नू हो ही जाएगा और एक्चुअली है भी। वंस अगेन वेलकम बैक आजी 102.7 एफएम रेनबो ते एंजॉय कर रहे हो तुसी मेलोडियस गीतां वाला शो मेड दी मेलोडीज और नाल ही नाल 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्त भी साडे नाल जुड़े हुए ने और गलबात चल रही है जी अज राजेश रोशन की। सो रोशन साहब संगीतकार रोशन साहब ने देखो हिंदी नू अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री नू अपने दो जिहड़े दिग्गज कमाल दे सोहणे सोहणे हाँ जी अपने अनमोल रतन दिते राकेश रोशन ते राजेश रोशन। और राकेश रोशन वालों जिथे सानू बड़िया सोहणिया है ना जी अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री नू फिल्मां दित्तियां गईयां उत्थे ही राजेश रोशन वालों ये जिहड़ा संगीत है ना इहदा सिलसिला इहदा जिहड़ा कह लो एक तोहफा है ना वह अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री नू दित्ता। और वाकई मैनू भी बहुत ज़्यादा परसनली कहाँ तो बहुत सोहने सोहने इन दे जिहड़े कि संगीत नाल रचे हुए जिहड़े गीत ने ना वो असीं इंजॉय करते हैं। सो इस सिलसिले च एक होर गीत है जो शायद सानू सारियां नू ही बहुत ज़्यादा पसंद है। स्टे ट्यून्ड।

वैसे जाना था मेनू भी है मैं क्या चलो फिर ए वाला गीत सुनिया जाए तो इस तो बाद थोड़ी तो इजाजत लीती जाए। सो अज मिड मेलोडीज जिहड़ा सिलसिला सीगा राजेश रोशन जी दे संगीत नाल सजा होया सी और मैनू पता है कि दोस्तों ने इंजॉय किया होना है। सो फिलहाल मैनू रिचा नू दिओ जी अज दे दिन इजाजत, मिलांगे तुहानू एफ एम रेनबो ते बहुत जल्दी है ना जी और होर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे नाल हाजिर होवांगी। तद तक लई अपना ख्याल रखना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाइड्रेट रखो अपने आप नू है ना जी और ट्यून इन रहना है एफ एम रेनबो दे नाल। और मिड डे मेलोडीज दा बिल्कुल लास्ट वाला गीत हुण आपां इंजॉय करांगे किशोर कुमार दी आवाज़ च। स्टे ट्यून्ड विद एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

अब लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता, अब लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता, हर किसी पर यूं भरोसा नहीं करता, जो दिल तोड़ कर चले गए बीच राह में, जो दिल तोड़ कर चले गए बीच राह में, अब उनका जिक्र भी नहीं करता। कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए, कुछ अपने थे जो दूर रह गए, जिन्हें वक्त देकर सबसे खास बनाया, वही लोग एक दिन बदल गए। अब मुस्कुराना सीख लिया है मैंने, दर्द छुपाना सीख लिया है मैंने, जो लोग साथ छोड़ जाते हैं अक्सर, उनके बिना जीना सीख लिया है मैंने। सच कहूँ तो अब फर्क नहीं पड़ता, सच कहूँ तो अब फर्क नहीं पड़ता, कौन साथ है कौन नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर अपना वही होता है जो हमारा दिल तोड़ता है। बहुत ही सोहनी कविता सानू सांझी कीती है सोनू मलेरकोटला तो ने, जो

0: दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: ये जितनी भी उबासियां आ रही है ना, इन्हें आप जरा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब समय है पूरा आपका ध्यान यहां लगाने पर। यहां मतलब आकाशवाणी रेनबो, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपके साथ हूं मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और मेरे साथ आज जो हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। जी दोस्तों, मेरे साथ हैं वो जो पिछले 14-15 साल से इस लाइन पर काम कर रहे हैं, श्री योगेश कुमार जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं।
3: हेलो, नमस्कार।
2: फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारी चर्चा श्री योगेश कुमार जी से, जिन्हें आपको पता है किताबें पढ़ने का बेहद शौक है और साथ ही बहुत अच्छे योगा थेरेपिस्ट भी हैं। उस बारे में भी हम बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया और योगा का क्या कनेक्शन हो सकता है। पर फिलहाल सबसे पहला सवाल योगेश जी कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है?
3: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से बिल्कुल संबंध टूट जाता है।
2: जी,
3: वो उन सब बातों पे ज़्यादा विश्वास करता है जो बिल्कुल सच नहीं होती, वास्तविक नहीं होती, और उनको जितना ही समझाने की कोशिश करो, उनका ये फर्म बिलीफ रहता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं। वो दूसरी की जो बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, और इसमें कई प्रकार के उसे भ्रम रहते हैं जिसे डिल्यूजन्स कहते हैं, और डिल्यूजन्स के साथ हैलुसिनेशंस भी रहते हैं। डिल्यूजन्स ये रहता है कि कहीं कोई उसको प्लॉट तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कहीं कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कभी उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तरह तरह की कमांड सुनाई देने लगते हैं, और उनका जो व्यवहार है और जो एक्शंस है वो जो आवाज़ें सुनते हैं उसके अनुसार उनका पालन करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है।
2: इतनी जबरदस्त स्ट्रांग होती है कि वो उसको जीने लगते हैं।
3: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उनके सोचने समझने के व्यवहार करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। और स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में रियलिटी से बिल्कुल संबंध टूट जाता है। वास्तविकता में जीवन कैसा है, स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ क्या है, उनका बिल्कुल आभास नहीं होता है व्यक्ति को, और वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जीना शुरू कर देता है।
2: योगेश जी, एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कहा एक भ्रमित जीवन जीते हैं, तो क्या ये भ्रमित जीवन 24 घंटे चलता है, या दिन के कुछ घंटे, या कोई एक पहर, या कोई एक घंटा ऐसा होता है कि जब वो उस कल्पना की दुनिया में चले जाते हैं और बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल और एकदम रेगुलर जिंदगी जीते हैं?
3: देखिए, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि, पर हाँ, जो ऑब्सेशंस होता है इन सब बिलीव्स का, थॉट्स का, वो 24 घंटे ही रहता है। पर कभी ये थॉट्स और जो बिलीव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं किसी टाइम पे, और किसी टाइम पे थोड़ा नॉर्मल्स हो जाते हैं।
2: ओके, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, साइकोटिक। मैं चाहूँगी कि आप इस शब्द पर थोड़ी और रोशनी डालें।
3: देखिए, जितनी जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, हम इनको दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा होता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होते हैं इनका कोई ऑर्गेनिक रिलेशंस नहीं होता है, कोई ऑर्गेनिक डिसीज जो है इसके

0: अच्छी नहीं होती है, ये एंग्जाइटी, डिप्रेशंस और स्ट्रेस से भी ये न्यूरोसिस डिसऑर्डर हो सकते हैं। और न्यूरोसिस डिसऑर्डर थोड़े माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो साइकोटिक डिसऑर्डर हैं वो बड़े प्रोफाउंड होते हैं, बड़े सीवियर होते हैं, और इनका इसमें व्यक्ति का रियलिटी से बिल्कुल टच चला जाता है। अब जैसे सिजोफीनिया है, साइकोटिक की कंडीशन उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। डिल्यूजन डिसऑर्डर है, साइकोटिक की कैटेगरी में आता है। और पोस्ट ट्रामेटिक डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशंस है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे न्यूरोसिस कैटेगरी में आते हैं।
1: ओके, तो दोस्तों आपने जाना कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो क्या चीज़ है, एक भ्रमित जीवन है। इसके बारे में अब हम और तफसील से बात करेंगे हमारे योगेश कुमार जी से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित है हमारे और आपके हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए। तब तक मैं इनसे अपना प्रोग्राम डिस्कस करती हूँ, आप सुनिए ये गीत।

0: तो श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगी आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। मेरे साथ है साइकोलॉजिस्ट श्री योगेश कुमार जी। आप पिछले 14-15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने योगेश जी ये बताया कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक भ्रमित जीवन है
1: जी।
0: आदमी अपनी कल्पना में जीता है, तो क्या सिम्टम्स हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
1: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स।
0: इसपे पॉजिटिव भी हो सकते हैं?
1: जी जी, पॉजिटिव सिम्टम्स का हम यहाँ वो सकारात्मक एटीट्यूड वाला पॉजिटिव नहीं लेते हैं।
0: ओके।
1: यहाँ पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है कि पॉजिटिव सिम्टम्स इंक्रीज द नॉर्मल फंक्शनिंग।
0: अच्छा।
1: जो व्यक्ति की नॉर्मल फंक्शनिंग है, दिनचर्या है, वो एक्टिविटीज

0: नॉर्मल सिम्टम्स में बढ़ जाती हैं, जो पॉजिटिव
1: ओके
0: सिम्टम्स होते हैं तो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी और जो नॉर्मल जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है।
1: ओके
0: तो इसमें पॉजिटिव सिम्टम्स में सबसे पहले आता है हमारा डिल्यूजन्स आता है, हेलुसिनेशंस आता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच आती है एंड डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर आता है।
1: डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच का क्या अर्थ हुआ?
0: देखिए, हम अगर श्रोताओं को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम शुरू से हम लेके चलते हैं,
1: जी
0: पहले
1: सर,
0: हम डिलीजेंस को लेके चलते
1: बिल्कुल
0: हैं, भ्रम को लेके चलते हैं, फिर हैलुसिनेशंस को लेके चलते हैं, उसके बाद में डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर की बात करेंगे।
1: जरूर।
0: तो सबसे पहले डिल्यूजन्स हम देख लें कि इसमें स्पेसिफिकली 4 टाइप्स के डिल्यूजन्स होते हैं सिजोफ्रेनिया में। तो सबसे पहले होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो ऐसे व्यक्ति को लगा रहता है कि वो जो है, जो भी व्यक्ति बात कर रहा है उसके बारे में ही बात कर रहा है। अगर ऑफिस में वो जाता है, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो उसे ऐसा महसूस होगा कि उसके बारे में ही बात कर रहे हैं।
1: तो ये डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस हुआ।
0: हाँ, और कभी कभी तो जो सॉन्ग के जो लिरिक्स होते हैं, गानों के लिरिक्स होते हैं, वो भी अपने को पॉइंट आउट कर लेता है कि ये मेरे बारे में गाना गाया जा रहा है, ये मेरे संदर्भ में गाना गाया जा रहा है। और कोई बुक का पैसेज भी होता है, वो भी ये अपने आप में मान लेता है ये मेरे संदर्भ में लिखा गया है।
1: माय गॉड,
0: तो आप देख सकते हैं कितनी भयंकर स्थिति हो
1: कितनी
0: सकती है।
1: दुविधा है और कितने तकलीफ में है वो।
0: जी, ये फिर आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल।
1: जी
0: डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में आदमी को ऐसा लगता है कि उसके फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। उसका कोई पड़ोसी कंट्रोल कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रही है।
1: जैसे अगर किसी स्थिति में गुस्सा बहुत तेज हो तो वो क्या कहेंगे कि ये मैं नहीं, ये उनकी वजह से मुझे
0: जी
1: गुस्सा।
0: जी कोई भी वो ये उसे बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि मैं अब अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। और मेरा, जैसे एक हिंदी में वर्ड होता है सम्मोहन करना, वशीकरण करना, कि मेरा वशीकरण कर लिया गया है, सम्मोहन हो रहा है मेरे पे, तो ऐसा उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। फिर होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशंस। परसिक्यूशंस में क्या होता है, अगर उसकी वाइफ किसी से बात कर रही है तो उसे ऐसा लगेगा कि भाई ये दोनों जो हैं आपस में प्यार करते हैं और ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं और ये मुझे जो है मारने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। उसे हमेशा ऐसे लगता है कि कोई पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और कोई मिलकर जो है सारे साजिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ अगर वो कहीं काम कर रहा है। और इवन उसे फैमिली मेंबर्स पे ऐसा शक होता है कि वो सब उसका फैमिली मेंबर्स मर्डर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आ जाती है।
1: तो ये जो शक करने की, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो आदत है, तो वो आदत नहीं है, कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया वहां मौजूद है।
0: मौजूद है, ऐसी कोई आदत अपने आप कल्टीवेट नहीं हो रही है।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: हमें
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: ही सावधान रहना होगा कि कहीं सिजोफीनिया के ये सिम्टम्स तो नहीं है।
1: जी जी जी
0: और एक होता है हमारा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर में क्या होता है कि आदमी को ये महसूस होने लगता है कि वो तो ऑलमाइटी है, वो गॉड है, उसमें सुपर पावर है। और यहाँ तक प्रतीत होने लगता है कि मैं कोई नोबेल पुरस्कार जीत सकता हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैं बहुत फेमस हूँ, ऐसी ऐसी वो कल्पनाओं में खोया रहता है। फिर हमारा आता है हेलुसिनेशन। तो सिजोफ्रेनिया में जो सबसे मुख्य होते हैं वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को आवाज़ें सुनाई देती हैं, साउंड सुनाई देते हैं, वॉइस सुनाई देते हैं। इवन उसे ऐसा भी प्रतीत होता है वो डायरेक्ट किसी से बात कर रहा है।
1: ओ, चाहे वो फिगर नहीं दिख रही हो, लेकिन ऐसा कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि जैसे कोई सामने खड़ा है और वो बराबर उनसे बातचीत कर रहा है।
0: जी
1: प्रॉपर जवाबों के सवाल वो दे रहे हैं और सवालों के जवाब उनको मिल रहे हैं।
0: जी जी इस पे एक मूवी भी आई है, उसमें तमन्ना भाटिया जी भी हैं। तो उसमें यही दिखाया गया है कि उस ये बुराड़ी की घटना पे बनाई गई है, जो दिल्ली में 10 लोगों ने एक साथ
1: साथ
0: जो
1: अपने आप
0: आत्महत्या की
1: को।
0: थी।
1: जी
0: और उसमें यही था कि वो ये सोचते थे कि उनके पिताजी मुझे कमांड दे रहे हैं और उन्होंने ही मुझे ये इंस्पायर किया है। जो उस पे जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, जो भी
1: एक्शन
0: रिसर्च
1: लिया
0: की
1: आपने
0: है,
1: उन्होंने। जी जी
0: जी इस
1: जी
0: इंसिडेंट पे जो भी पुलिस के द्वारा रिसर्च की गई है, तो उसमें यही पाया गया है कि वो ये उनका ये मानना है कि उनके जो बच्चे थे वो ये उनको प्रतीत होता था कि उनके पिताजी ये कमांड दे रहे हैं।
1: और एक को नहीं, मतलब जो दोनों तीनों जो भी बड़े लोग थे उन सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था।
0: जी जी ये बुराड़ी की घटना थी, नहीं सुनता एक ही व्यक्ति था पर फॉलो

0: दूसरे भी कर रहे थे उसे।
1: तो ये ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया था सागर का, विजयपुरा कर्नाटका से, कि वो 24 वर्षीय हैं और उनके दो सवाल थे कि एक तो सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया
0: जी के? हमने जैसे सिम्टम्स बताए, पॉजिटिव सिम्टम्स पे हमारी बात चल रही है
1: जी।
0: तो हैलुसिनेशंस में हमें ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के बारे में बताया। फिर एक आता है सोमैटिक हैलुसिनेशंस भी होता है, जिसमें आदमी को ये प्रतीत होता रहता है कि उसके सर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा, उसके शरीर पे कोई इंसेक्ट तो नहीं रेंग रहा, तो इससे सोमैटिक हैलुसिनेशंस होते हैं। एक गस्टेटरी हैलुसिनेशंस होते हैं, जिसमें उसे किसी भी जो भोजन उसने किया नहीं, जो ड्रिंक उसने पिया नहीं, उसका टेस्ट वो फील कर रहा होता है अंदर। और ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशंस भी होते हैं, और जिसमें स्मेल आती है उसे, स्मोक की स्मेल आएगी, पॉइजन की स्मेल आएगी, कोई भी स्ट्रेंज स्मेल उसे फील होती रहेगी, तो ये सारे हैलुसिनेशंस होते हैं।
1: ऐसा भी हो सकता है योगेश जी कि एक साथ दो या तीन चीजें चल रही हो, कि हैलुसिनेशन भी हो रहा हो, डिल्यूजन भी हो रहा हो?
0: जी जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ऑडिटरी हैलुसिनेशंस तो बहुत कॉमन होता है, और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस के साथ कई केसेस में देखा गया डिल्यूजन्स भी पाया जाता है।
1: ओके
0: और अब हम करते हैं डिसऑर्गेनाइज स्पीच की चर्चा
1: जी।
0: इसमें क्या होता है कि बहुत बोल रहा है व्यक्ति, पर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस है इसकी कन्वर्सेशंस में। वो कभी एक टॉपिक पे बात करता है, अचानक वो कन्वर्ट कर लेता है अपने टॉपिक को, दूसरे टॉपिक्स पे बात करने लगता है, और ऐसे ही कमेंट्री चलती रहती है, तीसरे टॉपिक्स पे आ जाता है, तो अगर कॉन्क्लूजन कुछ नहीं निकलता उसकी जो कन्वर्सेशंस को, हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कर रहा है। उसका टॉपिक सब्जेक्ट हमेशा जो है ऑन द स्पॉट ऑफ मोमेंट चेंज होता रहता है।
1: जैसे अभी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और स्पोर्ट्स की बात करते करते अचानक किसी कोई और टीवी के कार्यक्रम की बात करना शुरू कर देंगे, या कपड़ों की बात करना शुरू कर देंगे, और वो बात खत्म हुई नहीं कि उसके पहले कोई बाजार की बात शुरू कर दी, या पेड़ पौधों की बात शुरू कर
0: दी। जी जी इसे हम
1: आपस में कोई तालमेल ही नहीं।
0: सही कहा आपने, तो इसे हम क्लिनिकल टर्म में कहते हैं लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इसमें क्या होता है सिली एंड बिजारे बिहेवियर। आप गर्मी में भी बड़ा गर्म कंबल पहन के बाहर जा रहे हैं, गरम कोट पहन के जा रहे हैं, आपने बड़ी स्ट्रेंज टाइप के, जैसे स्ट्रेंजर्स कपड़े पहनते हैं, बड़ी विचित्र आपने ड्रेस पहनी हुई है, और कभी कभी पता नहीं चलता है, कोई मेल भी होता है वो भी लिपस्टिक लगा के और किस अंदाज में निकलता है, तो वो अलग ही पहचाना जाता है कि ये कहीं ना कोई मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है।
1: हमारे पास अब कुछ सवालों की झड़ी सी लग रही है, तो इस गीत के बाद हम एक बार हमारे लिसनर्स के कुछ सवाल ले लेंगे और फिर हमारे कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे।
0: जी फिर हम नेगेटिव सिस्टम पे चर्चा करेंगे।
1: जी तो इस बीच हम पहले थोड़े हमारे लिसनर्स के सवाल ले लेंगे। तीन चार प्रश्न मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इस गीत के बाद हम आपके प्रश्नों को लेंगे और योगेश जी से गुजारिश करेंगे कि वो इन सब प्रश्नों का तरतीबवार हमें सही जवाब दें।

0: स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आज बहुत तरतीबवार जाना कि बहुत ही जितने सिम्टम्स मैंने सुने आपसे अभी योगेश जी, तो दिल बहुत दुखा, बहुत तकलीफ हुई और विचलित हुआ मन कि जो इस सब से गुजर रहा है वो तो है ही तकलीफ में, लेकिन जो उसके साथ रह रहे हैं वो भी कितने तकलीफ में हैं, वो भी कितनी परेशानी में
1: जी है। फैमिली को भी बहुत परेशानी होती है।
0: देखिए, हमारे पास एक मधुबाला जी का मैसेज आया है कि मेरे पति मुझ पर ज्यादा शक करते हैं और बच्चों पर भी शक करते हैं। मैं जो खाने पीने की चीज उनको देती हूँ उन पर भी उन्हें शक रहता है कि उसमें मैंने कुछ मिला दिया है। उनके पिता भी कुछ कुछ ऐसे ही थे और बहुत ज्यादा इनके जो पति हैं वो बोलते हैं। डॉक्टर से दवाई भी ली है लेकिन वो खाते नहीं है, कहीं मुझे आने जाने नहीं देते, घर से भी नहीं निकलने देते और स्वयं भी घर से बहुत कम निकलते हैं और लगातार सब लोगों से मेरी बुराई करते हैं।
1: जिस हिसाब से आपने वर्णन किया है अपनी स्थिति का, तो उससे तो यही मालूम चल रहा है कि जो एक सिजोफीनिया है, जो एक पैरानॉइड सिजोफीनिया की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपने बताया कि बहुत शक करने की आदत है और आप पे भी शक करते हैं और मुझे बाहर भी नहीं जाने देते हैं, और फिर आपने बताया कि मुझे मेरे फादर इन लॉ को भी ये बीमारी थी
0: जी,
1: तो उससे भी ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि इसका जेनेटिकली भी अगर हम देखा जाए, अगर पेरेंट्स में ये बीमारी होती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी न्यू जनरेशन्स में भी वो बीमारी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब देख रहा हूँ, उनको शक करने की बहुत वो है, आपको भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं
0: जी।
1: तो ये पैरानॉइड सिजोफीनिया की कैटेगरी में आता है और आपको अच्छे साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: मतलब निराश होने की ज़रूरत नहीं,
1: नहीं
0: है?
1: बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिजोफीनिया क्योरेबल है, बहुत अच्छा एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल फील्ड में, बहुत अच्छी साइकोथेरेपीज़ हैं, बहुत रिसर्च हो रही है सिजोफीनिया पे और आज जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छा है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो जैसे उनका तो होगा ही, उनके पति का तो होगा ही ट्रीटमेंट, तो क्या थोड़ी काउंसलिंग इनको वाइफ को भी दी जाएगी कि किस तरह से आपको पेशेंट को हैंडल करना है?
1: देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और इसमें फैमिली साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है
0: जी।
1: क्योंकि हमें जो है उसके सिम्टम्स को, जो मरीज है उसके सिम्टम्स को समझने में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप थोड़े जो आप में एक अधीरता थी, आप अधीर थे अंदर से कि मेरे जो एक फैमिली मेंबर में क्या क्या चल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर के साथ क्या क्या हो रहा है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको

0: सिम्टम्स वो है स्पेसिफिक बताता है, उसके बारे में बताता है, तो आपको थोड़ा तसल्ली हो जाता है कि ये जो बिहेव कर रहे हैं वो किसी बीमारी से कर रहे हैं, किसी दूसरी वजह से नहीं कर रहे हैं। तो उसका क्या कारण है, निवारण है, आपको पता चलता है, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं, और आपको कोपिंग स्किल्स भी सिखाता है कि आपको उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे बिठाना है, आपको खुद अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: आपकी बात सुनकर उन्होंने अभी लिखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ?
0: देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि साइकोसिस के 3 मरीज

0: खुद अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है।
1: आपकी बात सुनकर उन्होंने अभी लिखा है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, वो दवाई भी नहीं खाना चाहते, मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ।
0: देखिए, ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। अभी WHO की रिपोर्ट आई थी कि साइकोसिस के 3 मरीज में से 1 मरीज डॉक्टर की सलाह ले रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करा रहा है और जो है बाकी जाना नहीं चाहते। तो ये बहुत गंभीर, यहाँ बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये अगर सिम्टम्स उनको किसी भी तरीके से अगर आप नहीं समझा सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, किसी भी तरीके से मोटिवेट करिए उनको कि ये सारी चीज़ें क्यूरेबल हैं, उनको बताइए आप एक बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज है, और जब ये इलाज हो जाएगा तो हमारे जीवन में, हमारे पूरी फैमिली में जो है खुशहाली आ जाएगी।
1: बिल्कुल। मृत्युंजय कुमार ने चेरकी गया बिहार से मैसेज किया है कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हूं और नवरात्रि की बधाई तो दी है, साथ में वो कहते हैं कि मैं आरोग्य शिक्षक के रूप में भी क्लास लेता हूं। विद्यालय में बच्चों के बीच सिज़ोफ्रेनिया की पहचान मैं कैसे कर सकता हूं?
0: देखिए, आपने कहा अगर बच्चों में थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है, हम कभी सोचने लगते हैं कि जैसे एडोलसेंट में हार्मोन्स चेंजेस वैसे ही होते रहते हैं, कभी हम उनको उत्तरदायी समझ लेते हैं कि ये ऐसा बिहेवियर इसलिए कर रहा है कि हार्मोन्स चेंजेस हो रहे हैं, टीनेजर हैं, इस तरीके की जो है नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, पर इसमें, इस स्थिति में हमें सिज़ोफ्रेनिया की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि इसलिए आपने देखा गया है कि ज़्यादातर सिज़ोफ्रेनिया की जो पहचान हम कर पाते हैं वो 20 से 40 वर्ष की आयु में कर पाते हैं, किशोर अवस्था में इतनी जल्दी पहचान नहीं हो पाती है। हम उसका जो कॉज जो ढूंढते हैं वही कहते हैं कि हार्मोन चेंजेस की वजह से या टीनेज में ऐसा बिहेवियर होता रहता है, ये कॉमन है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं।
1: जी जी जी, सब सवालों में एक सवाल अब बहुत अहम उभर कर आया है कि आखिरकार स्किज़ोफ्रेनिया होने के कारण क्या है?
0: देखिए, सिज़ोफ्रेनिया के होने के काफ़ी कारण हैं। अगर हम पहले हम जेनेटिक कारण देखेंगे, जेनेटिक्स भी होता है, तो रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर किसी एक पेरेंट्स में है तो चांसेस हैं सिज़ोफ्रेनिया के उसके बच्चों में 10-12% चांसेस बढ़ जाते हैं सिज़ोफ्रेनिया होने की, अगर एक पेरेंट में है।
1: और अगर ग्रैंड पेरेंट में हो, दादा दादी नाना नानी में, तो पोतों में, या
0: वो तो बात वही रही, अगर ग्रैंड पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स से फिर न्यू जनरेशन में आएगा तो हम उसी की बात कर रहे हैं।
1: Okay.
0: तो न्यू जनरेशन में जब आएगा तो उसके जो चांसेज होंगे, अगर एक पेरेंट में है तो चांसेस जो है 10-12% होंगे, अगर दोनों पेरेंट्स में है तो ये चांसेस 40% बढ़ जाते हैं।
1: ओके, ये तो हुआ जेनेटिक
0: का। ये जेनेटिक कारण हुआ। अब कई जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे जो मेन है वो डोपामाइन हाइपोथेसिस है। डोपामाइन हाइपोथेसिस में है कि एक्सेस डोपामाइन एक्टिविटी इन द सर्टेन एरिया ऑफ द ब्रेन, वो डोपामाइन एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है जिससे सिज़ोफ्रेनिया होने लगता है। हालांकि दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, पर डोपामाइन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन सिज़ोफ्रेनिया। और दूसरा हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है एनलार्जमेंट ऑफ सेरिब्रल वेंट्रिकल्स। तो जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स है, सेट ऑफ 4 जो है कैविटीज़ है जो भरी होती हैं, एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उससे भरी रहती हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स हैं दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द न्यूरल स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन्स। जब हम MRI या दूसरे तरीकों से देखते हैं, ये पाया गया है, रिसर्च स्टडी में भी पाया गया है कि ये ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है वेंट्रिकल्स, तो उनमें भी सिज़ोफ्रेनिया के चांसेस ज़्यादा हैं।
1: अभी तक तो आपने जो भी कारण हमको बताए हैं वो हैं जो हमारे अपने एफर्ट से परे हैं।
0: जी,
1: हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं
0: हैं। जी जी,
1: अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी अगर हमें आई है
0: जी,
1: तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या तो कुछ केमिकल अंदर प्रॉब्लम हुआ है या फिर जेनेटिकल।
0: जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को थोड़ा और कर लेते हैं। इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स में एक और चीज़ रह गई, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चे में वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है या बच्चे का जो वेट है बहुत कम होता है, और कभी कभी क्या होता है डिलीवरी के समय जो डिप्राइवेशंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, उससे भी जो है सिज़ोफ्रेनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे में। अब हम, जैसे आपने कहा कि हमारे वश में नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।

0: कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं। अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कोपअप किया जाए, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हम सीखते हैं तो हम जो है स्ट्रेस से, सिजोफीनिया से बच सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे कभी क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, बच्चे की बच्चा माँ से बहुत प्यार करता है, माँ का अचानक देहांत हो जाता है, या किसी भी पेरेंट्स की मृत्यु हो जाती है, या दूसरे कोई इमोशनल ट्रॉमा है, वो भी सिजोफ्रेनिया को जो है बढ़ावा देता है। और अब हम आते हैं फैमिलीज,
1: फैमिलीज पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
2: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

जमी और आसमां इस वक्त दोनों जो माहौल है वो ये गा रहा है कि स्ट्रेस जीवन में बहुत ज्यादा है। और आपने कहा कि अगर हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट को सही दिशा नहीं दी तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हैं। हम अब इससे आगे की बातचीत कर रहे थे कि और

0: क्या कारण हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के जो एनवायरमेंटल इश्यूज में आएंगे?
1: देखिए, फैमिलीज में ये देखा गया है कि पुअर कम्युनिकेशंस है, आपस में लोग इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरेक्शंस कर भी रहे हैं तो वहाँ जो इंटरेक्शन स्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें क्रिटिसिजम्स है, हॉस्टिलिटी है और एक्सेसिव इमोशनैलिटी है। तो हमें ऐसे जो इंटरेक्शन स्टाइल है बचना चाहिए। और कभी भी जो चाइल्ड की और मदर की जो रिलेशनशिप है या चाइल्ड और पेरेंट्स की रिलेशनशिप है वो बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हम आगे चल के उन बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, जिससे वो मनोरोग और स्ट्रेस से बच सकते हैं। और फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा गया है कि जो फैमिलीज़ हैविंग लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उनमें सिज़ोफ्रेनिया या मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा पाए जाते हैं।
0: ओके, अभी पीछे हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे थे। हमने पॉजिटिव सिम्टम्स तो पूरा कवर किया, लेकिन नेगेटिव हमारे बीच में क्वेश्चंस की वजह से रह गया था, तो मैं चाहूंगी एक बार आप उसको वापस कंटिन्यू करें।
1: हाँ, देखिए, पॉजिटिव सिम्टम्स तो हमारे हो गए थे, जिसमें हमने डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर बताया था। अब अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स वो होते हैं कि जो डिक्रीज नॉर्मल फंक्शनिंग को डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या बताया कि वो इंक्रीज करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को, और नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं डिक्रीज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्लैट इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट में है कि जिसे सिज़ोफ्रेनिया है उसमें का जो फेस होगा वो इमोशनल लेस होगा, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, कोई भाव नहीं होंगे, कोई आईज कांटेक्ट नहीं देगा, ब्लैंक होगा बिल्कुल, वो किसी व्यक्ति को आईज कांटेक्ट नहीं देना चाहेगा। इसे हम फ्लैट इफेक्ट कहते हैं। फिर आता है दूसरा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच में है, अगर आप उससे बोल रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वो बड़ा लैप्स दे रहा है, आफ्टर ए लॉन्ग लैप्स वो आपके जवाब देगा, कोई प्रश्न का जवाब देता है, और वो भी बहुत बहुत ही छोटा जवाब, और कभी कभी तो जवाब वो देगा ही नहीं, बहुत कम बोलेगा, और जितना भी आप बुलवाने की उसे कोशिश करेंगे उसका हाँ या ना में उत्तर होगा। तो इसे कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच। फिर हम तीसरा इसमें सिम्टम्स है लॉस ऑफ मोटिवेशन, कि लाइफ में कोई मोटिवेशंस नहीं, कोई सेल्फ केयर नहीं, ऑफिस जाना बंद कर देगा, अगर बच्चा है तो वह स्कूल जाना बंद कर देगा, नहाएगा भी नहीं, एक कमरे में पड़ा रहेगा, अपनी जो सेल्फ केयर हाइजीन का भी ध्यान नहीं रखेगा,
0: उमंग नाम की जीवन में कोई चीज ही,
1: कोई मोटिवेशन ही नहीं रह गया, तो वो अपना सेल्फ केयर भी नहीं करेगा, वो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेगा, एक आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा। अब चौथा आता है हमारा लॉस ऑफ एनर्जी एंड फीलिंग ऑफ प्लेजर। तो इसमें ये भी देखा गया है कि बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है, एक जगह इंसान पड़ा रहता है और बिल्कुल जो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस है वो बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल खुश नहीं रहता आदमी, बहुत उदास सा रहेगा, तो उसका जो दृष्टिकोण है सभी चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आती हैं।
0: रंजन लाल साहब की उम्र 50 वर्षीय है, कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कोई कुछ बोलता है तो बात बात में बहुत गुस्सा आ जाता है और वही बात फिर दिन रात मेरे अंदर चलती रहती है, क्या इसका भी कोई कनेक्शन है किसी मानसिक विकार या बीमारी से?
1: देखिए, इस पे तो आपको एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दो चीजों पे काम करना है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने एंगर मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था, तो ऐसा कोई प्रोफाउंड सीवियर कोई मेंटल इलनेस नहीं है आपको, आप थोड़ा एंगर मैनेजमेंट पे काम कीजिए।
0: हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जाना कि क्या है, क्यों हो सकता है, सिम्टम्स क्या है और अमूमन कारण क्या होते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या इससे उबर पाना, इससे ठीक हो जाना, निजात पाना संभव है?
1: देखिए, आज बहुत एडवांसमेंट है और साइकोथेरेपी काउंसलिंग है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है, और अगर पेशेंट, अगर जो मरीज़ है टाइम पर डॉक्टर की सलाह लेता है, डॉक्टर के पास आता है और अपना ट्रीटमेंट कराता है, क्योंकि सिज़ोफ्रेनिया में ये देखा गया है कि लोग जैसे इसमें डिल्यूजन वाली स्थिति होती है, हेलुसिनेशंस वाली स्थिति होती है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं, लोग इसे विचक्राफ्ट समझने लगते हैं, कोई जादू टोना समझने लगता है।

0: है, तो आप सब लोगों से विनती है कि चक्कर में ना पड़ें। ये कोई विचक्राफ्ट या जादू टोना नहीं है, ये एक बीमारी है, तो आप इसका प्रॉपर टाइम से इसका इलाज कराएं। अगर टाइम से इलाज कराएंगे, हाँ, इसका जो इलाज थोड़ा लंबे समय तक चलता है, कई हमने मरीज देखे हैं कि बीच में ही अपना ट्रीटमेंट जो है डिसकॉन्टिन्यू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ट्रीटमेंट आप पूरा करवाएं तो आप देखेंगे कि इसका रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और आप इससे जो है छुटकारा पा सकते हैं।
1: मतलब 100% शत प्रतिशत निजात पाने के चांसेस हैं अगर हम अपना लगातार ढंग से डॉक्टर के कहे अनुसार अपना इलाज कराएं तो।
0: जी बिल्कुल।
1: जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस समय जो उनके परिवार वाले हैं उनके लिए आपके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, क्योंकि इसमें जब हम परिवार की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि परिवार वाले भी कैसी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मरीज को हैंडल करना जो काल्पनिक दुनिया में रहता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो फैमिली साइकोथेरेपी भी करते हैं और इसमें बताते हैं कि आपको मरीज को कैसे हैंडल्स करना है, उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे टिप्स देते हैं, योगा मेडिटेशंस करवाते हैं और उनका जो संबंध है आपस में, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं जो आपका इंट्रैक्शन स्टाइल्स है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो टॉलरेंस पावर बहुत कम हो चुकी होती है, तो आप में कोशिश करते हैं कि आपकी टॉलरेंस पावर बढ़े, आपका इंट्रैक्शन स्टाइल बढ़े, आपका और मरीज का जो संवाद है वो एक ऐसे स्तर पर आ जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जाने समझें।
1: स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को क्या अधिकतर दवाइयां दी ही जाती हैं या केवल काउंसलिंग, ये जैसे आपने कहा कि साइकोटिक थेरेपी से भी फर्क पड़ सकता है?
0: देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया में जो टाइप ए स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसमें हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें दवाइयां बहुत ज़रूरी हैं, कि दवाइयों के साथ काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो दवाइयां और काउंसलिंग साइकोथेरेपी साथ साथ चलनी चाहिए, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
1: ये दवाइयां भी क्या लंबे समय तक चलती हैं?
0: जी जी।
1: इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: इंद्रजीत का हमें मैसेज आया है दिल्ली से। उनका एक सवाल है, कहते हैं मैं मंगोलपुरी में रहता हूँ, मेरी बिटिया 25 वर्षीय है, वो बार बार अपने हाथ धोती है, अपने कमरे में ही रहना पसंद करती है और किसी भी सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती, ये क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या क्योर है?
1: देखिए, अगर बार बार हाथ धो रही है तो आप समझिए कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और ये ओसीडी है, ये क्योरेबल है, तो आप जल्दी किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट को दिखाइए।
0: जैसे अभी यहाँ मुझे लगा थोड़ा डायग्नोसिस का प्रॉब्लम है
1: जी।
0: तो मुझे लगता है आम तौर पे हम घरों में हमें डायग्नोसिस करना नहीं आता
1: जी जी,
0: तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में डायग्नोसिस पर आप क्या कहेंगे?
1: ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस फील्ड में यही है कि डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, तो उसके अनुसार 3 सिम्टम जैसे हमने बताए, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स एंड डिसऑर्गेनाइज स्पीच, अगर 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स इसमें हैं और वो 6 महीने से अगर ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं तो आप समझिए कि डायग्नोज हो जाता है कि वो सिज़ोफ्रेनिया है। पर ICD भी इसी के बारे में डायग्नोज करता है। ICD होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। तो ICD-10 के हिसाब से यही 3 सिम्टम्स हैं, 3 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स ज़रूर होने चाहिए, पर इसमें अवधि का डिफरेंस है। जहाँ DSM-5 जो है ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ्स ये सिम्टम्स चलने चाहिए, वहीं ICD-10 ये कहता है कि अगर 1 महीने भी ये सिम्टम्स चल रहे हैं तो डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये सिज़ोफ्रेनिया से व्यक्ति पीड़ित है।
0: तो इस बात से ये अंदाजा क्या हम लगा सकते हैं कि जितना जल्दी अगर इस बीमारी को डायग्नोस कर लिया जाए उतना फास्ट इसका निजात हो सकता है?
1: देखिए, जितना जल्दी जल्दी अगर हम पकड़ लेते हैं सिम्टम्स और डायग्नोस कर लेते हैं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और ट्रीटमेंट भी इतना लंबा नहीं चलता है।
0: अब हम ट्रीटमेंट की जैसे बात कर रहे थे
1: जी,
0: तो कितने तरह के ट्रीटमेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया में अवेलेबल हैं?
1: देखिए, मेडिकेशंस के ज़रिए भी हम इसमें जो है एंटी साइकोटिक मेडिसिंस भी देते हैं, जिसमें जो है क्लोज़ेपाइन आजकल इंडिया में बहुत दी जा रही है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल भी रहा है, और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जा रही है। इसमें जो है करंट पास किया जाता है ब्रेन में और ये 8 से 12 बार दी जाती है सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को, और हफ्ते में सिर्फ ये 1 या 2 बार ये ट्रीटमेंट होता है। इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और ये उस केस में ज़्यादा है जहाँ कैटेटोनिक स्टूपर है। कैटेटोनिक स्टूपर मतलब कि बिल्कुल जो है इमोबिलिटी है, बिल्कुल इंसान जो है उसकी एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जैसा एक स्थान पे जहाँ वो बैठा है, खड़ा है, वैसे ही बैठा रहता है, खड़ा रहता है, तो ऐसी कैटाटोनिक स्टूपर में पोजीशंस हो जाती है। और अगर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट फेज में होता है तब भी उस केस में भी जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपीज जो है बहुत अच्छी प्रूव हो रही है। और इसके अलावा हमारे पास जो है साइकोसोशल रिहेबिलिटेशन पे भी हम काम करते हैं कि जो सिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है हम उसे ऑक्यूपेशनल और वोकेशनल स्किल सिखाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसको सेल्फ केयर के बारे में बताते हैं, सोशल पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं कि वो फॉलो करें, और उसको एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज करवाते हैं।

0: इससे कि उसका मोटिवेशंस बढ़े और वो काम करने के लिए तैयार हो जाए।
1: जो अभी आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का बताया या जो आपने और तरीके बताए, एक पेशेंट या उसके घर वालों के लिए उसको कैसे पता चले कि इसमें ये दिया जाएगा, या जो सामने डॉक्टर है या जो सामने साइकेट्रिस्ट है साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये सजेस्ट करा है, क्योंकि पेशेंट को इतनी समझ नहीं और मन में एक वहम एक डर आ सकता है कि इससे कहीं चीज और बिगड़ तो नहीं जाएगी, तो किस लेवल पर आकर ये वाले ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, ये कैसे तय हो?
0: देखिए मैं ये बता दूं कि जो आपने पूछा कि इसको भी कैटेगरी सिम्टम्स के हिसाब से सारे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया होता है, अगर डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस की चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, एक डिसऑर्गेनाइज्ड सिज़ोफ्रेनिया होता है, अगर डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है, जो हम सिम्टम्स में हमने एक्सप्लेन किया है तो उसे डिसऑर्गेनाइज सिज़ोफ्रेनिया के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। फिर ये आपका आता है रेजिडुअल्स, जो लेफ्ट ओवर सिम्टम्स बच गए हैं, यानी कि जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो रेजिडुअल्स में आ जाते हैं। और एक होता है कैटेटोनिक सिज़ोफ्रेनिया, जिसमें या तो एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती है या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट आ जाती है, कि जिसमें जहाँ बंदा बैठा है एक अगर हाथ वो कुर्सी पर अगर पीछे करके बैठा है तो उसी अंदाज में वो काफ़ी उसी पोजीशन में काफ़ी घंटों तक बैठा रहेगा, तो इसे कहते हैं, जहाँ भी साइकोमोटर डिस्टर्बेंस होती हैं उसे कैटाटोनिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसे कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और ये कैटेगराइज करके सिम्टम्स देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं।
1: योगेश जी, जिस तरह से हम और आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक और चलते ही रीडर डॉक्टर का प्रोग्राम कर सकते हैं
0: जी।
1: तो इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से फाइनली क्या कहना चाहेंगे।
0: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं या मेंटल इलनेस है, अगर हम शुरू से कई प्रिवेंटिव मेजर्स लें, अच्छा योगा करें, ध्यान करें और सोशल पार्टिसिपेशंस करें, हॉबी कल्टीवेट करें, तो हम देखते हैं, अगर धूप लें, आजकल मैंने ये देखा है कि जो एसी कल्चर हो गया है कि लोग धूप नहीं ले रहे हैं, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं खेल रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आने लगी हैं। जो मैग्नीशियम्स हैं, B12 की बड़ी कमी आ गई, एक रिसर्च के मुताबिक B12, B6, B8 ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है, इनकी डेफिशिएंसी भी रिस्पॉन्सिबल है सिज़ोफ्रेनिया के लिए, तो हम अब देखें हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी तो नहीं हो गई है, तो ये सुनिश्चित करते रहें कोई विटामिन्स की कमी ना हो, आउटडोर गेम्स खेलें, योगा करें, मेडिटेशंस करें, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे विनती करूँगा, और स्मोक ना करें, ड्रिंक ना करें, तो मैं सबसे विनती करूँगा ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, एक सात्विक जो है आप लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं।
1: और एक अच्छा डॉक्टर, हमें ये पता कैसे चले कि हाँ ये डॉक्टर हमारे लिए परफेक्ट है, हम एक एज अ पेशेंट या एज अ फैमिली मेम्बर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम डॉक्टर के पास जाएं?
0: देखिए अगर जगह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले तो आप ये देख लिए कि क्वालिफाइड है, क्योंकि कई लोग इतना क्वालिफाइड नहीं है, इक्विप्ड नहीं है कि वो आपका सही ट्रीटमेंट कर सकें, तो हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराएं। और दूसरा ये कि जब आप देखें कि वो अप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज तो है पर कितना डिलीवर कर पा रहा है, क्या वो शिद्दत के साथ आपकी आपके साथ उसकी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं, आपको टाइम दे रहा है, और वो भी क्या वो भी उसमें भी मल्टी टैलेंटेड है, वो भी मेडिटेशन आपको सिखा सकता है, योगा सिखा सकता है, उसकी भी अवेयरनेस बीमारी को लेकर कितनी है, तो ये सब अब जब आप जाते हैं, जब आप स्वयं ही आपको थोड़ा पता लगने लग जाता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही डॉक्टर से इलाज कराएं जिसकी संवेदनाएँ आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हों, क्वालिफाइड हो।
1: थैंक यू सो मच, मैं और मेरे श्रोता हम बहुत आभारी हैं आपके कि आप स्टूडियो आए और आपने हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो एक मेंटल विकार है उसके बारे में इतनी तफ्तीश से बताया और पूरा एक खाका खींचा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार।
1: तो दोस्तों, आपने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कारण क्या है और इसका इलाज किस तरह से संभव है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? इससे संबंधित कोई भी सुझाव या फीडबैक आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर। एक बार फिर से दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इससे संबंधित कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहें तो आप हमें दे सकते हैं healthairdelhi@gmail.com पर।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शाली।

0: नी मित्तल, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शाम होगी यादगार। आकाशवाणी एट 90 के उपलक्ष में आकाशवाणी दिल्ली लेकर आ रहा है भारतीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित स्वर साधिका विदुषी शुभा मुद्गल का भव्य गायन कार्यक्रम।

0: दिव्यता की अनुभूति लिए एक विशेष सुरमई संध्या आराधना आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को समर्पित
1: रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली 25 मई 2026 सोमवार शाम 4 बजे कृपया अपने साथ अधिकृत पहचान पत्र अवश्य लाएं।
0: आइए सुर और संस्कृति के इस अनूठे उत्सव का हिस्सा बने हम आप और विदुषी शुभा मुदकर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू।

0: www.radiomirchi.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7,000 रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया।
3: वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओह आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: सो प्रोग्राम तुसीं इंजॉय कर रहे हो लव यू जिंदगी अपनी दोस्त ते होस्ट आज रिया दे नाल। ते अज आपां गलबात कर रहे हां पॉजिटिविटी दी। हुण पॉजिटिविटी बड़े तरीके दी हुंदी है, सोच दी पॉजिटिविटी, नज़रिए दी ते शब्दां दी। पर कई लोग समझते हैं कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होंगे ने अपनी लाइफ के, वो भोले होंगे ने, थोड़े उन्होंने कोई भी पागल बना सकता है, पर इदा नहीं हुंदा। हुण आपां नूं एग्जाम्पल दे नाल एक समझते हैं। अज मैनूं लगता है कि मैं टीचर बनी हुई हाँ तो एक एग्जाम्पल्स बार बार दे के समझा रही हूँ। बट कहिंदे ने कि जिंदगी भी एक किताब हुंदी है ते उन्हूं सीखना चाहिए जिंदगी तो, उन्हूं पढ़ना चाहिए उस किताब नूं, रज के पढ़ना चाहिए ते स्वाद लेना चाहिए जिंदगी तो। सो आप एग्जाम्पल लेने, सपोज के रब ना करे किसी के घर इदा अग लग गई, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। हुण जिहड़ा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बंदा होएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा होएगा, वह की करेगा, अच्छा हुण अग लग गई है, हुण मैं पानी लभना है तो अग नूं बुझाउणा है। तो जो नैगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा होगा या जिन्हों अंग्रेजी के पैसीमिस्ट कहेंगे, वह कहेगा हाय हाय मैं तो लुटिया गया, मेरा तो सब तबाह हो गया। सो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, वह सानू जिंदगी के चंगे माड़े हालातों एक्सैप्ट करके वो रिस्पोंसिबिलिटी लैन की ताकत दिता, उन्होंने जिम्मेवार, मतलब सानू जिम्मेवार बनाता है। सो इदा नहीं होंगे कि भाई जो पॉजिटिव बंदा है वह भोला है, नहीं, जो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बंदा है वह ऑप्टिमिस्टिक होने के रिस्पोंसिबल भी होंगे है।

समा हो गया शाम के 7 हनवारी है एफएम न्यूज हेडलाइंस थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नवी दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोवां धिरां ने भारत अमरीका रणनीतिक भाईवाली नूं महत्वपूर्ण करार किया। सरकार वजन अते नाप माप निरीक्षण प्रणाली नूं मजबूत करने लई जांच केंद्रां दी भूमिका का विस्तार करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान

सो वीकेंड दी ओम शांति ओम लैके मैं हाजिर हो गया क्योंकि पूरे हफ्ते दे स्ट्रेस नू हुण रिलैक्स करन दी वारी है। ते कहंदे आ ना कि भाई अगर तुसी रिलैक्स चाहते हो, अगर तुसी चाहते हो कि यार जिन्ना स्ट्रेस है, जिन्ना प्रेशर है, जिन्नी ओवर थिंकिंग है, सारी दी सारी ओम शांति ओम हो जाए, तो उदली जरूरी है 102.7 एफएम रेनबो देते 7 to 11 ट्यून इन करना अपने दोस्त दिन दना दिन आरच सचिन दे नाल। सो जी अगले 4 घंटे दी महफिल लैके मैं तुहाडे नाल जुड़ गया, बहुत सारी गल्लां बातां, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत, बहुत सारी थोड़ी फरमाइशां, ते बहुत सारा अनलिमिटेड फन। सो तैयार हो जी तुसी, मैं क्योंकि पूरी तरह तैयार हाँ, दसदा कि वीकेंड जिहड़ा हैगा बहुत ज़्यादा खास हैगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा हाले तक, क्योंकि भाई पंजाब दे क्वालीफाइंग उम्मीदा जिहड़ियां सीगियां उह साडे तों मुंबई कोलों सीगियां, ते मुंबई ने शुरुआत जिहड़ी सी उह बहुत ज़्यादा बुरी की, बहुत ज़्यादा बुरी की, मतलब सारी दोपहर स्ट्रेस गुजारी जिस तरीके दे नाल, मतलब मुंबई ने शुरुआत की, राजस्थान नूं समेट लिया सीगा, ते एक पल ही लगा सीगा कि भाई अज जिहड़ा हैगा ना पंजाब क्वालीफाई करा के मुंबई बनेगा, लेकिन उस तों बाद जोफरा आर्च रविंद्र जडेजा दिल तो तोड़ के गए है गया, ते उस तो बाद शर्मा साहब आ जाए, ते आज 4 गेंदां 0 रन बना के आउट हो गए। गल्ला करांगा स्पोर्टी संडे दे विच सारियां, लेकिन भाई मैं अपने दिल दा दर्द तुहानू दस्सदा हैगा कि आ बड़ा ही स्ट्रेसफुल संडे, इस करके मैनू ओम शांति ओम चाहीदी सीगी, ते हुण तुहानू ओम शांति ओम किन्ना चाहीदा हैगा देख लांगे, ते दस दिए कि अगले 4 घंटे दी महफिल च की होण वाला, 7 to 8 चलेगी जी फिल्मी दुनिया दे गप शप गॉसिप, की चल रहा है, किहड़ियां नवीं रिलीजेस है ओटीटी उत्ते, की चल रहा हैगा, ते की प्यारी नवीं मूवीज़ दा रिव्यू हैगा, सब दसांगा। 8 बजे आ जाएगा जी ए मेरा पंजाब, जिथे आप करेंगे पंजाब की कोई ना गलबात, ते 8:30 आ जाएगा जी स्पोर्टी संडे, 9 बजे थोड़ा फेवरेट प्रोग्राम दिल चाहता है, ते उस तो बाद आएगा जी 10 बजे गजलों की महफिल शाम गजल, ते उस तो बाद 10:30 होएगी जी बैक टू बैक सॉन्ग्स एक प्यार का नगमा है। सो तैयार हो तुसी इस प्यारी जी महफिल शुरू करने लिए, इस प्यारे जे ट्रैक देना मिलते हैं, जिस ट्रैक के उस पार बहुत सारी गल्ला बातें फिल्मी दुनिया तक इंजॉय करो, प्यारा जहा ट्रैक कविता कृष्ण मूर्ति सोनी निगम की आवाज़ के।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे

बिल्कुल जी, कुछ इस तरह का ही मैजिक चढ़ाएगा ना वो राजेश रोशन दे गीत से। मतलब इन्नी देर तो बॉलीवुड दे विच वो अपना जड़ा सफ़र है वो जी रहे हैगे, ते आज भी उन्हां दे म्यूजिक दे विच वही फ्रेशनेस, वो ही जिहड़ी जादू है, वो ही जिहड़ा मैजिक हैगा ना वो कैरी फॉरवर्ड करता हैगा। दसदे है कि अज हैगा जी राजेश रोशन जी का हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे जी। जी हाँ, 24 मई 1955 नूं मुंबई दे विच पैदा होए राजेश रोशन जिहड़े हैगे आ राकेश रोशन जी दे ब्रदर हैगे आ, ते उन्होंने महमूद जी ने उन्होंने सब तो पहला 1974 दे

बिल्कुल जी, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके दिल चाहता है ना, देख के हमेशा दिल चुराई गीत निकल रहा है ना कि यार चलो 9 बज गए हैं, उन दिल चाहता है ना मिलके, दिल दी फरमाइशां जड़ी हैगी, थोड़े प्यारे ट्रैक जड़े हैगे वो सुनन नु मिल जाएंगे। सो अगला एक घंटा तुहाडी दिल दी फरमाइशां लैके थोड़ा प्यारा जिहा दोस्त दिन दिन आरजे सचिन जिहड़ा हैगा जुड़ गया, तुहानू पता है कि तुसीं अपनी फरमाइशां जिहड़ियां हैगी हिंदी पुराने गीतां या पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी जिहड़ी हैगी मेरे नाल कर सकते हो रात 10 बजे तक। नंबर वैसे तुहाडे दिलो चान दे उत्ते बस, लेकिन भाई आपां अपनी जिम्मेदारी देना, नंबर दस देना 9855101027, यानी कि 9855101027 उत्ते तुसीं रात 10 बजे तक मैनूं अपनी फरमाइशां जिहड़ियां हैगियां भेज सकते हो। लेकिन एक छोटी जी एक प्यारी जी रिक्वेस्ट है मैंने अपने सारे दोस्तों तो कि भाई जो तुम फरमाइश करते हो थोड़ी जी पेशेंस भी रख्या करो, क्योंकि कई बार तुम बार बार फरमाइश बार बार रिपीट करते रहते हो तो थोड़ी फरमाइश कई बार पहली आई होती जब तक मैं उत्थे तक पहुँचना वो टॉप पर चले जाती है। सो मेरा हमेशा रूल रहता है कि जिदी पहली फरमाइश उसका पहला नाम। सो कोशिश करांगे जी तुहाडी मैक्सिमम फरमाइशां आपां इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर सकी। अगर फरमाइश तुहाडा गीत नहीं भी शामिल कर पाया तुहाडे नाम नूं इस प्रोग्राम दे विच शामिल करन दी पूरी कोशिश रहेगी ही रहेगी। सो दिल चाहता है इस फरमाइश नूं शुरू करदे हां जी। पहली फरमाइश दे नाल ते फरमाइश मेरे को आई हैगी है जी नायवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा और अलका मिड्डा जी ने यह फरमाइश की थी। लिखा सब प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। लो जी बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन हैगा जी। इन्होंने कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। लवारिस मूवी दे इस ट्रैक दी इन्होंने फरमाइश जड़ी हैगी है वो कीती हैगी है। लो जी बिल्कुल तुहाडी फरमाइश लैके मैं तुहाडे नाल जुड़ रहा, तो इसी फरमाइश के नाल मैं कुछ एक नाम जिहड़े हैगे जोड़ना चाहूँगा। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा जी दा नाल ही साढ़े को अनारकली बाजार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा ते भाई सुचा सिंह पाठक जी का मैसेज भी हैगा। जी आर पॉल तो पूरा पॉल परिवार सराबा नगर जलंधर तो भी साढ़े नाल जिहड़ा हैगा वो जुड़िया हैगा। नाल हैगे जी साढ़े कोल बटाला सिटी गुरदासपुर तो सत श्रीकाल लिख के भेजी हैगी है, तो फरमाइश करने वाले हैगे है जी, नाम नहीं लिख के भेजा। अच्छा नूर कौर विरक जिहड़ा हैगा इन्हों का नाम हैगा, इन्होंने फरमाइश जी हैगी है वो भेजी है। सो अज सब दे मिली जुली फरमाइश के नाल मैं इस प्रोग्राम की इस पहली फरमाइश में लैके जुड़ रहा हैगा जी। लवारिस मूवी तो किशोर कुमार की आवाज़ के अपनी फरमाइशा मेरे रात 10 बजे तक शेयर कर दे रहो। मिल रहे हैं जी दिल चाहता है दे विच।

मैं कुछ एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। तो विक्रम, सचिन, सतीश, ते योगेश और यधुव है, इन्हों का मैसेज आया है गए। तो नाल है साढ़े को चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, शेफाली सैफी, तो मास्टर डैविस। इस तो अलावा साढ़े को गाँव नथाना पंजाब तो ही हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता भी है, वो जुड़े हैं। तो नाल सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह, कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, तो बिट्टा बजाज, इन्हों ने साढ़े नाल जी है वो राबता कायम किया है। नाल ही जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो सरबजीत सिंह जौसन, सरबजीत कौर जौसन, तो गुरवंत, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्श सिंह, आदर्श आल सिंह जौसन, तो वैंकूवर कैनेडा तो रॉबिन सिंह जॉनसन जिहड़े हैगे, इन्होंने राबता कायम किया हैगा। सो ए सब मिली जुली फरमाइश, तो अगला ट्रैक जो मैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ के लै गया, तो अपनी फरमाइशा 9855101027 यानी कि 9855101027 से रात 10 बजे तक मैं शेयर कर सकता हूँ। फरमाइश किसी भी हिंदी फिल्मी पुराने गीत की या किसी पंजाबी फिल्मी पुराने गीत की मेरे नाल जुड़ते रहो।

अगली फरमाइश आई है जी गांव लोहगुड़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब। तो इन्हें लिखा दी नमस्कार जी, फरमाइश कहते हुए फिल्म गिरफ्तार देगी, धूप में ना निकला करो रानी, कहीं रंग काला, कहीं गोरा रंग काला ना पड़ जाए। फरमाइश करने वाले ने स्वर्ण सिंह गिल, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह, गुरमान सिंह और अविराज सिंह। लो जी बिल्कुल थोड़ी फरमाइश लेके जुड़ रहे थे नाल ही।

भाई वैसे भी लू बहुत ज्यादा चल रही है, धूप में बिल्कुल भी निकलिया करो। अपनी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने जड़ी हीट वेव यानी लू चलन दी अगले हफ्ते की जड़ी वार्निंग है वो दिती है। सो अपना ख्याल रख के, यही गल किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने भी कही है, थोड़ा ध्यान रख के अपना बहुत जरूरी है। तो अगली फरमाइश लेके चलते हैं जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो ने की है। इन्होंने लिखा है फिल्म हम तुम दे गीत सांसों को सांसों में, अलका याग्निक ते बाबुल सुप्रियो की आवाज़ दे विच लिखा है। तो बिल्कुल जी आ फरमाइश लैके मैं जुड़ रहा हाँ तुहाडे नाल। तो इसी फरमाइश के नाल मैं जोड़ रहा जी मजनू का टीला तो कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एम पी तो उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी नू। नाल है साढ़े को जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। तो इस दे नाल साढ़े को मैसेज आया पहाड़गंज मुल्तानी टांडा तो अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक कैथल हरियाणा तो, साढ़े नाल है जी मधु नायक, नाल ही साढ़े को ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्स हरिद्वार तो इन्होंने लिखे। आदरणीय प्रसार जी नमस्कार, आप हमारी फरमाइश को किसी भी गीत के साथ शामिल करें, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लो जी तुहाडा नाम मैं है इस प्रोग्राम के शामिल कर रहे हैं। नाल नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो आया साढ़े को महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी। इस तो अलावा ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक और आया जलंधर तो भी साढ़े नाल प्रोग्राम जुड़े है। तो इस अलावा साढ़े को आए है जी सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, तो गाँव को मारखेड़ा सहारनपुर तो इन्होंने लिखा प्रेमपूर्वक अब एनी सॉन्ग और अपनी पसंद में हमें भी शामिल करें। लो जी तो उन्होंने शामिल असी कर लिया। नाल गांव फरासी जिला हिसार तो भी मैसेज आया राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी का, इन्होंने भी किसी गीत दे विच अपने आप नू शामिल करने की जी रिक्वेस्ट है वो की हैगी। साढ़े को नाल है जी लखा सिंह जी, मिठी मिठी प्यारी प्यारी जी सत श्रीकाल भेजी हैगी है। इन्हें है जसबीर संधु नाल, मोहन प्यारे, हेयर मास्टर बूटा मंदिर जलंधर तो, ते ए भी साढ़े नाल प्रोग्राम दे विच जिहड़े है वो जुड़ गए हैगे आ। ते इस तो अलावा उत्तम नगर दिल्ली तो बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल ते भानु प्रकाश जी, इन्होंने भी साढ़े नाल जिहड़ी है वो हाजिरी लगवाई है। ते इस तो अलावा साढ़े कोल आए है जी आदमपुर तो, नाम लिख के भेजना भुल गए है, ते इन्हां लिखा सचिन जी यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस शो, प्लीज़ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸਮ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਿਤੇਂਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਸ਼ੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ, ਐਨੀ ਸੌਂਗ ਟੂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਪਲੀਜ਼ ਆਰ ਜੇ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਟਿਊਨ ਇਨ ਬਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਰਕਰ ਰਾਜੇ ਜਾਧਵ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜੇ ਜਾਧਵ, ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਚਿਤਵਾਇਲ, ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਥਮੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਕੁਮਾਰ ਸਰਵਤ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਅਤੇ ਸਾਨਵੀ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਕਾਲੇਗਾਓ, ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਵਿਨੋਦ ਕਾਟਪਾਲ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਟਪਾਲ, ਹਨੀ ਕਾਟਪਾਲ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਾਟਪਾਲ, ਜੰਨਤ ਔਰ ਗੁਰਲੀਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਮ ਤੂੰ ਮੂਵੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ, ਟਰੈਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋਗੇ 9855 1 0 1 0 2 7 9 9 8 55 105 1 0 1 0 2 7।

कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज, पर्व प्रवीण, चिराग, रजत, राजेश ने लिखा जी, सचिन जी नमस्कार, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, आपकी मीठी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, मेरे सारे ही दोस्तों इस तरीके की जी हला शरीर जरूर दिया करो, तो मैंने उम्मीद लगता है कि तुम्हें सारे आरजेस की आवाज़ ही वधिया लगती होनी, क्योंकि साढ़े सारे आरजेस इन्नी प्यारी मीठी आवाज़ के मालिक है कि भाई जिहड़ा भी इस माइक के उत्ते बैठता ना वो अपना मैजिक कैरी करके ही बैठता है, तो वो तुहाडा प्यार है कि सारे आरजेस नूं इन्ना ज़्यादा खास बना देता है, बट तुहाडे तारीफ किए हुए अल्फाजा लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा जीवन में परमात्मा आपको बहुत उन्नीत दे, आज राष्ट्रीय भाई दिवस है, हमें अपने जीवन में भाइयों को सम्मान करना चाहिए और हमारे देश में इसका महत्व अब बढ़ता जा रहा है और अपने देश में भाई बहनों को बहुत प्यार है। एक बात जल्दी के बारे में कहता हूँ कि ठंडी चीज़ों का सेवन करें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, बिना काम के बाहर धूप में ना जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है जी, तुसी थोड़ी जी गल दे विच बहुत सारी गल्ला कहते हैं। इस अलावा इस फरमाइश दे विच मैं जोड़ रहा हूँ जी नाम राजस्थान तो रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान जी का भी इस अलावा इस प्रोग्राम दे विच जुड़े हैं। मेरठ कंठ तो दिग्दर्शन और कविता जी, नाल कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह चौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी तो पिंटू दीवाना, तो रजिंदर सिंह ओबराए जी है वो साढ़े नाल जुड़े हैगे है। इस तो अलावा साढ़े नाल सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी, मनी, काका, बिट्टू, लाडी, मोहन, मास्टर जनक नगर जलंधर तो जुड़े हैगे है, तो नाल हैगे साढ़े कोल नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र तो PS नहावकर, निर्मला नहावकर, तो विशाल नहावकर, मलकापुर तो है गया जी नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, इन्होंने लिखा जी धन्यवाद। इस तो अलावा साढ़े नाल हाजिरी लगाई है जी मनाली हिमाचल तो हर्ष, विनय, विनित एंड रोजस भाई ने, चंडीगढ़ सिटी तो शेफाली, शेफी, डेविस, विमला, सतीश और पूरा अनेजा परिवार। लिखा कृपया जी नमस्कार, कृपया हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी। मेहरबानी जी, साढ़ा प्यार है तो उन्हें बिल्कुल शामिल किया है। तो इस अलावा साढ़े को आए हैं जी कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, सिंदरी जिला बलोत्रा राजस्थान तो नाल ही साढ़े जुड़े है जी साढ़े कोल गाँव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा ते सार्थक शर्मा जी। इस अलावा इस प्रोग्राम दे विच मैं जोड़ रहा जी गाँव खुखड़ा वाले विनोद बारसा, विशाल बारसा, विकास, रोशनी और शगुन, आपका हर पल खुशियों से भरा लेके ते इन्हां नाल लिखे भेजे आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार। लो जी बिल्कुल तुसी नमस्कार किया, असीं क्यों ना करांगे। इस तो इस मिली जुली फरमाइशां दे नाल मैं तुहानू सारिआं नू जोड़ रहा हैगा, तो फरमाइशां इस तरीके चलते रहेंगे रात 10 बजे तक। स्टूडियो घड़ी का टाइम होया जी 9:40, तो तुसी अपनी फरमाइशां अगले 20 मिनट होर शेयर कर सकते हो। तद तक मैं लैके आ रहा जी जब भी ये तो उदास मोहम्मद रफ़ी ते शारदा दी आवाज़ दे विच।

एफएम रेडियो सुनने को दिल करता है क्योंकि हर उदासी का इलाज हमारे पास है 102.7 एफएम रेनबो पर। और अगली फरमाइश चली है कि HUOI है जी साढ़े को साधु शहर राजस्थान। तो राजकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जिन्होंने फिल्म शोर दे गीत एक प्यार का नगमा है दी फरमाइश की है। लो जी मैं इस फरमाइश में लेके हाजिर हो रहा नाल है जी साढ़े भोपालगढ़ राजस्थान। तो धर्मेंद्र छीमा, कपिल छीमा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने लिखा है कि मैसेज जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी बिल्कुल। इसके अलावा साढ़े नाल जुड़े है कि है जी गोविंदपुरा सीकर राजस्थान। तो दातर सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह ते रिंकी शेखावत नाल आया जी साढ़े को पिंड बनाला हनफता फाजल का। तो विनोद मायल, सीमा, लक्षता, यसिका, माता विद्या देवी ते सारा मायल परिवार किसी भी गीत की फरमाइश चढ़ी हैगी की त्या करणवीर हाउस पूंचो कैंचियाँ बठिंडा पंजाब। तो नमस्कार लिखे है जी प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह, सिमू, एकम, दमन, अभिजीत किसी भी गीत में शामिल कीजिए, धन्यवाद। लो जी शामिल कर लिया तो अनु ना लेगा जी। आदरणीय मेजबान जी नमस्कार जी, कोई भी गीत सुना दे, थैंक्स जी। आदर्श नगर मलोट पंजाब। तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा प्लीज लिख के भेजा भाई। प्लीज लिखन वाली कोई गल नहीं, अपना प्यार हैगा तुसी रिक्वेस्ट करनी, असी फरमाइशां तां पूरियां करनियां ही है। उत्तम नगर दिल्ली तो आया बोतराज खोराल खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल ते भानु प्रकाश जी। इस तो अलावा साढ़े नाल जुड़े है जी चक 14 PSP। तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज फिर दे वालों सत श्रीकाल जी, क्या बात है। लो जी प्यार भाई सत श्रीकाल मेरे वालों भी तुम्हें सारियां नूं। गांव को मंडिया सूरतगढ़ तो आया जी जगदीश टुकिया, प्रमिला टुकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम टुकिया, ईवा धारनिया। प्रोग्राम पेश करने वाले को नमस्कार। लो जी मेरे वालों भी नमस्कार तुम्हें सारियां नूं। इस तो अलावा प्यार भरे सत श्रीकाल लिख के भेजे नाल हार्दिक अभिनंदन लिखे है जी जीके परमार ते ज्योतना परमार ने दिलों धन्यवाद। लो जी बिल्कुल तुहाडे वो दिनों वाले। इस तो अलावा साढ़े को मैसेज आया है गए जी तनौरी तेलीवाल उत्तराखंड। तो निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलबिया आलिया और आयान बाबू प्लीज एनी सॉन्ग। आदर पर प्रसारक जी नमस्कार, आदाब, आपको तहे दिल से शुक्रिया। लो जी तुसी शुक्रिया क्या है तसी क्यों तुहाडा फरमाइश जी है वो लैके हाजिर नहीं होवांगे। तो इस दे नाल ही इस मिली जुली फरमाइशा से किसी को लैके अगे चल रहे हैं एक प्यार का नगमा लता मुकेश की आवाज़ में। तुम अपनी फरमाइशा मेरे ना लगते 12 मिनट होर शेयर कर सकते हो क्योंकि स्टूडियो के करते टाइम हो गया 9:48 मिनट। तो नंबर है जी 9 8 5 5 1 0 1।

प्रोग्राम चल रहा है जी, दिल चाहता है तो फरमाइशा इस किसन लैके अगर चलते हुए अगली फरमाइश जी आई है वो आई है साढ़े कोल मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश भट्टा, कनेर मोहला पटियाला। तो इन्होंने फरमाइश की है जी फिल्म आपकी कसम तो जय जय शिव शंकर कांटा लागे ना कंकर। लो जी बिल्कुल इस फरमाइश नाल मैं कुछ होर नाम जोड़े वो जोड़ना चाहूँगा। यह नाम आए हैगे है जी साढ़े कोल पिंड ते डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी जिला जिंद हरियाणा तो जिंद हरियाणा तो जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर धन्यवाद करते हैं। हाँ जी प्रोग्राम दिल चाहता है पेश करने वाले आरजे नूं प्यार भरा सत श्रीकाल। बिल्कुल जी लो जी तुहाडे इस प्यार भरे सत श्रीकाल नूं असीं भी समेट लिया है। मलौट तो कुलवंत सिंह, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल, कैनेडा तो दिशा मोहला, जगत तार, जग्गा तौला, किंगरे तो लो जी बिल्कुल। तो नाल है जी साढ़े को दिलबाल सिंह बाजवा फ्रॉम दुबई एंड माई फ्रेंड्स। तो इन्हां लिखिया है जी श्रोता रघुवीर नगर तो दिलावर खान, हसीना बानो ते एलिया नायाज और लड्डू। इन्होंने लिखा है हम इग्नोर ना करे जी, लो जी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। पिंड चों जिहड़ी तहसील खरड़ जिला एसएस नगर तो लियाकत अली, निशा शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार भरी सत श्रीकाल जी। सानू तुसीं कोई भी गीत सुना दो जी, धन्यवाद। लो जी बिल्कुल। सो मैं कोशिश की है कि अपने सारे प्यारे दोस्तों नू इस प्रोग्राम दे विच शामिल करा, कई दे गीत शामिल किए ते उसी गीतां दे नाल मैं कई अपने दोस्तों के नाम जिहड़े हैगे ओह शामिल कर ले हैगे। इस दे नाल ही हुण मैनूं इजाजत दिओ दिल चाहता है दी इस प्यारी जी महफल समेटन की इस आखिरी ट्रैक के नाल। तो उम्मीद करदा कि जिहड़े प्यारे दोस्तों के ट्रैक मैच प्ले नहीं कर पाया इस पूरे हफ्ते में, जिहड़े अपने साडे बाकी दोस्त दिल चाहते दे विच जुड़नगे प्यारे आरजे जुड़नगे, तुसीं उन्हां नाल अपनी फरमाइशां लैके जुड़ सकते हो। तो तुहाडी फरमाइशां इस पूरे हफ्ते दे विच जरूर पूरियां होणगियां। तो इजाजत दिओ दिल चाहते नूं समेटन की, हसते रहो वसते रहो, मिलते हैं दिल चाहते दे उस पास शामे गज़ल दे विच। ते आखिरी ट्रैक जय जय शिव शंकर।

शामे गज़ल के इस महफ़िल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगला आधा घंटा कुछ प्यारी सी कहानियों के साथ, कुछ प्यारी सी गज़लों के साथ आपके दोस्त आरजे सचिन के साथ। शुरू करते हैं इस प्यारी सी महफ़िल को इस प्यारी सी कहानी के साथ। स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हर शाम वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता था, चुपचाप कोने में बैठता और अपनी पुरानी घड़ी को बार बार देखता रहता। लोग कहते थे कि शायद वो किसी का इंतजार करता है। एक दिन दुकान वाले लड़के ने पूछ ही लिया, बाबा रोज किसका इंतजार करते हो? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वक्त का। लड़का हंस पड़ा, वक्त भी कभी लौट कर आता है क्या? बूढ़े ने घड़ी को हथेली में दबाते हुए कहा, नहीं बेटा, लेकिन कुछ लोग चले जाएं तो इंसान वहीं रुक जाता है जहां वो उसे छोड़ कर गए थे। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने बताया कि बरसों पहले उसकी पत्नी इसी स्टेशन से अपने मायके गई थी। जाने से पहले उसने कहा था, जल्दी लौटूंगी, लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उसे हमेशा के लिए छीन लिया। उस दिन के बाद बूढ़े ने घड़ी पहनना छोड़ दिया। कहता था, जिस दिन वो गई उस दिन मेरे लिए वो वक्त भी रुक गया। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं मगर उम्र भर दर्द देते हैं। वो जो कहते थे हम तुम्हारे हैं, आज किसी और के सहारे हैं। वक्त बदलता रहा, लोग बदलते रहे, एक हम थे जो तेरी यादों में संभलते रहे। कभी कभी इंसान नहीं उससे जुड़ी ज़्यादा

किस्मतें रुलाती हैं। इंसान तो आगे बढ़ जाता है, जिंदगी वहीं रुक जाती है। लड़का रोज उसे देखने लगा। धीरे धीरे दोनों में एक अपनापन सा हो गया। एक दिन बूढ़ा नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पूरा एक हफ्ता बीत गया था। अब लड़का बेचैन होकर उसके घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, कमरे में सन्नाटा था और मेज पर वही पुरानी घड़ी रखी थी। उस घड़ी के नीचे एक कागज दबा था, उस पर लिखा था, बेटा अगर मैं कल ना आऊं तो समझ लेना इस बार वक्त मुझे उसके पास ले गया। लड़के की आंखें भर आई। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग मरते नहीं, बस यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। किसी को खोकर ये एहसास हुआ कि लोग नहीं, उनकी मौजूदगी जीना सिखाती है। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी निभाने पड़ते हैं जिन्हें भूलना चाहो फिर भी यादों में आने पड़ते हैं। मोहब्बत ख़त्म नहीं होती साहब, बस लोग निभाना छोड़ देते हैं। शाम गज़ल के इस महफिल को लेके मैं चलता रहूँगा रात 10:30 बजे तक आप सबके साथ। सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। इस रात की सुहानी सी महफिल में अपने दोस्त आरजे सचिन के साथ।

बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी। रवि अपने पुराने सामान को समेट रहा था। अचानक उसे एक पुरानी किताब मिली जिसके पीछे एक अधूरी चिट्ठी रखी हुई थी। वो चिट्ठी उसकी माँ की लिखी हुई थी। रवि की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। कांपते हाथों से रवि ने वो चिट्ठी खोली। मेरे बेटे रवि, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं, लेकिन बेटा कभी खुद को अकेला मत समझना। रवि की आंखें भर आई। उसे याद आया माँ हर रात उसे सीने से लगाकर सुलाती थी और कहती थी, जब तक माँ की दुआ साथ है तब तक कोई तकलीफ छू ही नहीं सकती। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। ये वो रिश्ता है जो कभी कमजोर नहीं होता। घर खाली हो जाता है जब माँ की आवाज़ नहीं सुनाई देती। जिसके पास माँ होती है उसके दर्द भी आधे हो जाते हैं। रवि देर तक चिट्ठी पढ़ता रहा। आखिरी लाइन अधूरी थी, बेटा जिंदगी में चाहे कितने भी मुश्किलें आए बस हमेशा। उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। शायद माँ लिख ही नहीं पाए, लेकिन रवि समझ गया था कि माँ कहना चाहती है हमेशा मुस्कुराते रहना। उस रात रवि बहुत रोया, मगर बरसों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। माँ चली जाती है लेकिन उसकी दुआएं कभी घर नहीं छोड़ती। कुछ रिश्ते मौत से ख़त्म नहीं होते, वो यादों में हमेशा।

एक छोटे गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। गरीब परिवार था, लेकिन आंखों में सपने बड़े थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, तेरे बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन अर्जुन हर रात छत पर बैठकर तारों को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई, कई बार भूखा सोया, कई बार किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं थे, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। मुश्किलें रोकना चाहती थी रास्ता मेरा, लेकिन हौसलों ने सफर सारी रखा। जो गिर कर संभल जाता है वही इंसान आगे निकल जाता है। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन आखिरकार अफसर बन गया। उसी गांव में जहां लोग उसे ताने मारते थे, आज उसकी मिसाल दी जाती थी। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, इतनी ताकत कहां से लाई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गरीबी ने सिखा दिया कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी किसी की नहीं सुनती। वक्त सबका बदलता है, बस इंसान को कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, मेहनत के पसीने से लिखी जाती है। जी हाँ, जिंदगी का यही तो फलसफा है। कभी हार है, कभी जीत है, कभी जीत है, कभी हार है, कभी सुख है तो कभी दुख है। ज़रूरी है तो उन सब में खुद को खड़े रखना। अर्जुन की यह कहानी हमारी ज़िंदगी का वही सबक है जो अक्सर मुश्किलों में हम कहीं भूल आते हैं। तो जाते जाते ये सबक के याद के साथ आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मिलूंगा इस आखिरी गज़ल के उस पार गीतों के महफल एक प्यार का नगमा में है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शाम गज़ल को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। साथ में था आपका दोस्त आरजे सचिन। आप FM रेनबो को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी रेडियो के नाम से भी ढूंढ सकते हैं, और साथ में अपने दोस्त आरजे सचिन को भी RJ_SSHIN।

एक प्यार का नगमा है। अगला आधा घंटा बैक टू बैक सॉन्ग्स आपके दोस्त आरजे सचिन के साथ आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.7 एफएम रेनबो पर। हमारी साखिर महफिल को जाते हुए इस शाम के साथ और भी हसीन बनाने के लिए।